0: आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे।
1: वलौ नशा

0: और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां देख सकेंगे।
1: वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदिया वला यर्जिउन।
0: और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से ना आगे जा सके और ना पीछे लौट सके।
1: वमन نعمده ننكسه في الخلق افلا يعقلون।
0: और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में औंधा कर देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं।
1: وما علمناه الشعر।

0: कैफियत यह है कि ये मेरा भाई है, इसके यहाँ 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर जबरदस्ती करता है।
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من

0: उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे।
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
0: और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी।
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था।
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा।
1: هذا وإن للطاغين لشر مآب
0: ये नेमतें तो फर्मा बरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है।
1: جهنم يصلونها فبئس المهاد
0: यानी दोजख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है।
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق
0: ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें।
1: وآخر من شكله أزواج
0: और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे।

उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चार पायों में से आठ जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां फिरे जाते हो?

और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नर्म होकर खुदा की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही खुदा की हिदायत है और इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको खुदा गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं।

आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व है, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कमाल, और आज हमारे साथ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से मौजूद हैं सर मेहरान। सर कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अहमद आप कैसे हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
3: प्लेजर इज़ माइन।
2: सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको 3 साल हो गए हैं UCP में, और आप अब मौजूदा IR के कोऑर्डिनेटर सर्व कर रहे हैं।
3: जी, सम 3 years and few months। और हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से BSIR की कोऑर्डिनेशन को मैनेज कर रहा हूँ।
2: तो सर पिछले 3 साल से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और एज अ कोऑर्डिनेटर कैसा एक्सपीरियंस?
3: UCP have given me a wonderful opportunity. University of Central Punjab को जब मैंने ज्वाइन किया था, I came from University of Sialkot, वहाँ पर मैं लेक्चरशिप से कर रहा था। और UCP में it was fun, it always been, काफ़ी अच्छे colleagues, mentors मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। The purpose of shifting was also कि मैं एक थोड़े कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में आना चाह रहा था, जहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हो। तो पिछले 3 साल से कॉन्टीन्यूसली इस ग्रोइंग सफ़र पर हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: सर फैकल्टी आर के हर प्रोग्राम में ना हमारा एक टॉपिक होता है, तो आज का भी हमारा टॉपिक क्या है? फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है। तो सर इसका एक आम बंदे के जानने के लिए, जो कि स्टूडियो से बाहर बैठा सर रोड पे जा रहा है, गाड़ी में बैठा है, उसके जानने के लिए आप क्या बताएंगे कि फॉरेन पॉलिसी है क्या?
3: सो बेसिकली अहमद, हम फॉरेन पॉलिसी को अक्सर सुनते पढ़ते हैं अखबारों में और अपनी डेली लाइफ रूटीन में। फॉरेन पॉलिसी से जो एक मतलब लिया जाता है, विच इज़ दैट के फॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक स्टेट की पॉलिसी है। जैसे हमारे पास हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं, वैसे ही हमारे पास फॉरेन पॉलिसी एक रियासत की पॉलिसी है। और इसमें स्टेट फॉर्मुलेट करने की कोशिश करती है अपने फॉरेन रिलेशंस को, अपने बैरुल अक्वामी तालुकात को। सो जब एक रियासत के कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो कि उसकी अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं होते, जैसे हमारे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे होते हैं कि जो एक स्टेट की बाउंड्री तक कन्फाइन नहीं रहते, तो उस पैराडाइम को मैनेज करने के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हम अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं कि अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके हम अपने रिलेशंस को किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी हमें उस मकसद के लिए काम आती है कि एक स्टेट की पॉलिसी जो कि उसके ब्रॉडर रिलेशंस को हासिल करने के लिए काम आती है।
2: सर इसके भी 2 पहलू आ जाते हैं ना, कि इसकी तश्कील क्या है और तकमील क्या है।
3: अहमद, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि इस फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए उसकी तश्कील और उसकी तकमील, उसकी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन, हमें दोनों को समझना पड़ता है। और उसकी तश्कील हम करते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है ऑन द बेस ऑफ कौमी मफादात और कौमी मकासद के, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। कौमी मफादात या कौमी जो मकासद जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं उनके जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सेम होंगे, इंक्लूडिंग स्टेट सोवरेनिटी, इकोनॉमिक इंटेग्रिटी, देन आइडेंटिटी ऑफ ए स्टेट। तो ये 3 बेसिक पैराडाइम्स के अंदर हम एक स्टेट के जो मकासद हैं उनको बयान कर सकते हैं। ऑल अराउंड द ग्लोब हर किसी को अपनी सोवरेनिटी को इंश्योर करना होता है, हर किसी को अपनी इकोनॉमिक इंटेग्रिटी को एक्सपैंड करना होता है, और हर किसी को अपनी आइडेंटिटी को थ्रू आउट द ग्लोब जो है वो मनवाना होता है। तो इन्हीं 3 इंटरेस्ट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक हर स्टेट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने इन इंटरेस्ट को अचीव कर सके। उन ऑब्जेक्टिव्स क्यों माइंड में रखें हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन करते हैं।
2: जी सर बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है, और इन दोनों फैक्टर में से पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है?
3: सो अनदर गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं आपके पिछले क्वेश्चन का जवाब दूं। आपने तकमील की भी बात की, मैंने आपको सिर्फ तश्कील का भी बोला था। या तो अबाउट द तकमील फॉरेन पॉलिसी की, उसके लिए हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक डिप्लोमेसी और किसी एक ज़माने में वॉर भी एक इम्पॉर्टेंट टूल था फॉरेन पॉलिसी का। अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएं, जब हमारे पास सिविलाइज स्टेट्स नहीं थे, बादशाहत का ज़माना था, तो किसी बादशाह को किसी नेबरिंग रियासत स्टेट किसी नेबरिंग रियासत से कुछ चाहिए होता था तो वो उस पर इन्वेड करता था। कोहेरेंस वॉर इज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके इंटरेस्ट जो आपकी टेरिटरी के बाहर उसको हासिल करने के लिए। हमारे पास मुगल एम्पायर की और हमारे पास बाकी सारी बहुत सारी रोमन एम्पायर्स की बहुत सारी एम्पायर्स की एग्जांपल्स हैं कि जब भी किसी को कोई इंटरेस्ट जो कि उनकी टेरिटरी से बाहर होते थे तो वो उसके लिए उसको इन्वेड करते थे, उस पर अटैक करते थे, तो वॉर। लेकिन सिंस वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल लॉज की कोडिफिकेशन के बाद हम वॉर को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर मानते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट भी अगर वो तब हो जब वो जस्ट वॉर हो। सो नाउ डिप्लोमेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरन पॉलिसी। फॉरन पॉलिसी की तकमील के लिए हमारे पास डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में आगे वी हैव अ फर्दर कैटेगरीज, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड द स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। नाउ मूविंग टू योर करंट क्वेश्चन विच वॉज के हारजा पॉलिसी का आज़ाद होना, इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी। गुड क्वेश्चन अहमद। अखबार में आपने भी अक्सर पढ़ा होगा मुल्कों की आज़ाद खारजा पॉलिसी, किस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, किसकी नहीं है, कभी इन इस तरह के अल्फाज से फैमिलियरिटी हुई होगी, राइट? तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से मुराद बेसिकली आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होती है, डिपेंड करता है आपकी पावर पे। द मोर पावरफुल यू आर द मोर इंडिपेंडेंट योर फॉरेन पॉलिसी इज। तो क्या पावर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव है, अहमद आपके ख्याल से क्या है? ऑल द इंटरव्यू मेरा है लेकिन मैं आपको भी साथ एंगेज करूंगा।
2: सर मेरे ख्याल में पावर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है,
3: रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एक्चुअली एब्सोल्यूट आपकी बात ठीक है, हम उसको क्योंकि सोशल साइंसेस में कुछ भी पूरी तरह से डिनाई नहीं करते, लेकिन पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर आप ताकतवर हो तो आप किससे ताकतवर हो, आप किसी से ताकतवर हो या किसी से कमज़ोर हो, तो वो रिलेटिव में चली गई। जब आप किसी से ताकतवर हो या किसी से कमज़ोर हो तो वो एब्सोल्यूट ना रही, वो रिलेटिव में गई। तो सिंस पावर रिलेटिव है तो फॉरेन पॉलिसी का इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होना भी रिलेटिव है। वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान पावरफुल है वहाँ पे उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और प्रोएक्टिव होगी, वो डिसीजन लेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं जो जिनसे हम पावरफुल हैं, वहाँ पे नॉर्मली हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन सिमिलरली जहाँ पे बिगर स्टेट्स आ जाती हैं तो वहाँ पे आपकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट और रिएक्शनरी बेसिस पे चली जाती है, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो एक ग्लोबल ऑर्डर को मैनेज कर रही होती हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हो तो आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इट्स अ मिक्स फिनोमेना, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट भी होती है एट अ सेम टाइम और डिपेंडेंट भी होती है।
2: सर पावर की भी आपने बात की, तो अगर हम कुछ डिकेड्स पीछे जाएं तो कुछ स्टेट्स का ये मानना होता था कि एक स्टेट का सर्वाइवल दूसरी स्टेट्स के हाथ में पे जुड़ा हुआ है, कुछ का अभी भी मानना है ये, तो क्या आपके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ठीक था कि नहीं?
3: सो यू आर टॉकिंग अबाउट द रियलिज्म, और अगर अभी ये नहीं मानना तो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। रियलिज्म जो कि ये मानता है कि आपका बका जो है वो आपका सर्वाइवल जो है वो आपकी पावर मैक्सिमाइजेशन पे है, जितनी आप पावर गेन करेंगे उतने आप पावरफुल होंगे और उतने चांसेस आपके सर्वाइवल के ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके जवाब में कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो हमारे पास लिबरलिज्म है। अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो उसमें हमारे पास हम बिलीव करते हैं कि कोऑपरेशन और आपस में को इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस से हम जो है इस चीज़ को अपने अपने स्टेट के रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं।
2: जी तो सामिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे और सर से मजीद सवाल पूछेंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामिन, हम वापस आ चुके हैं और सर से हम बात कर रहे थे रियलिज्म लिबरलिज्म के बारे में और पावर के बारे में। सर, हम यही बात कर रहे थे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म का पावर के साथ क्या रिलेट।
2: हाँ, तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था जिसके एड्रेस में हम रियलिज्म और लिबरलिज्म की तरफ बढ़े थे, वो सवाल आपका कुछ इस तरह से था कि पहले रियासतें ये मानती थीं कि उनका सर्वाइवल, उनका बका उस पर डिपेंड करता है कि जब उनके नेबरिंग में कोई बिगर पावर ना हो, राइट। तो रियलिज्म और लिबरलिज्म को इस पैराडाइम में हमने डिस्कस किया था एंड यू वर राइट अबाउट इट, लेकिन आज के टाइम पे भी हमारे पास ये दोनों थ्योरीज, ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी किसी पिछले ज़माने में थी। लेकिन सिंस इन दोनों अप्रोचेस ने एक अल्टरनेटिव सिस्टम दिया कि आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते होंगे कि आपका बका, आपका सर्वाइवल जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को खुद एम्पावर करो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, यस, अगर आपके नेबरिंग में अगर बिगर पावर्स हैं तो पाकिस्तान या कोई भी कंट्री उसके साथ को एग्जिस्टेंस में एक अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकती है, जो कि बेसिस है लिबरलिज्म की। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास चाइना है कि सिंस पाकिस्तान और चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी में दे बिन ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड, और अभी जब से वो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं सिंस द सी पैक, तो हम वी कैन सी के दे बिन एस्टैब्लिशिंग अ गुड रिलेशन विद ईच अदर। तो एक बिगर पावर में और एक स्मॉलर पावर में एक लंबे अरसे से एक ज़बरदस्त रिलेशन जो एस्टैब्लिश हैं वो हमारे पास एक आइडियल एग्जांपल है पाकिस्तान और चाइना की। तो इट डजंट ऑलवेज हैज टू बी कि आपकी नेबरिंग में आपसे वीकर स्टेट्स ही हो तो आपका सर्वाइवल इंश्योर हो सकता है।
1: जी सर, सर आपने पिछले सवाल में एक बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी के एक टूल वॉर भी यूज होता था पहले।
2: हाँ जी,
1: है तो अभी भी टूल है ये, लेकिन अब अगर करंट टाइम में हम देखें तो अगर दो स्टेट्स के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो वॉर के अलावा कौन सा टूल यूज कर सकती हैं?
2: इसके लिए हमारे पास पूरा एक कॉन्सेप्ट थ्योरी है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, ADR के नाम से जानते हैं, नेगोशिएशन, मीडिएशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन की पैराडाइम में ये चीज़ आती है। हमारे पास बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने गुड ऑफिसर्स प्रोवाइड करते हैं उन स्टेट्स को जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसको रिजॉल्व करना, और इवन अगर किसी के बीच में जंग है भी तो उसका इख्तिताम जो है वो सीज फायर की शक्ल में होता है। तो एवरी वॉर एंड्स इन अ केस ऑफ द सीज फायर एंड देन सीज फायर लीड्स टूवर्ड्स द नेगोशिएशन एंड इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट। हम देखते हैं कि वॉर ऑन टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो कि तकरीबन 21 साल चली लेकिन ख़त्म हुई एक सीज फायर के साथ और एक दोहा एग्रीमेंट के साथ। ग्लोबल जितनी भी वॉर्स हैं उसके बाद हमें अब नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। तो यही हमारे पास अल्टरनेटिव टूल है कि इफ़ वी डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉर तो विल गो फॉर द नेगोशिएशन, ताकि हम मिल बैठ के हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें। और अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑफिसर्स मिल जाते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं जो अपने ऑफिसर्स प्रोवाइड करती हैं रियासतों को ये काम करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक एग्जांपल।
1: सर, एज अ पाकिस्तानी कराची से लेके हैबर तक हर एक इंसान के एक लफ्ज तो आदमी सुना होगा सी पैक का। तो सर, एक आम बंदे के जानने के लिए सी पैक है क्या?
2: अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा सी पैक जपते रहे हैं पिछले कुछ सालों से। सी पैक एब्रीवेशन तो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सो इकोनॉमिक कॉरिडोर से मतलब कि ये दोनों किसी इकोनॉमिक इनिशिएटिव पे साथ चल रहे हैं। सी पैक BRI जो कि चाइना का एक बड़ा आइडियल प्लान है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। BRI में हमारे पास 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं और सी पैक उसका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें दो कंट्रीज़ हैं, चाइना और पाकिस्तान, और ये दोनों कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं। और ये सी पैक को BRI का लिंच पिन भी करार दिया गया है क्योंकि सी पैक इज़ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर अमंग ऑल ऑफ द BRI कॉरिडोर्स।
1: अब हम अपने जरा टॉपिक को फॉरेन पॉलिसी के इसके साथ रिलेट करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सी पैक से क्या ताल्लुक है।
2: सिंस 2015 पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में देर इज अ डिबेट कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी सेंट्रिक से इकोनॉमिक इनिशिएटिव की तरफ मूव कर गई है। हाँ, लेकिन इस डिबेट की अगर हम बात करें तो एक चीज नोट करने के लिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करेगा, लेकिन सिक्योरिटी बेसिकली वो पहली फाउंडेशन थी जो कि एक स्टेट को रिक्वायर्ड थी अपने सर्वाइवल के लिए। जब रियासत का सर्वाइवल इंश्योर हो गया तो उसके बाद वो अपनी इकोनॉमिक इंटेग्रिटी के ऊपर काम करने की कोशिश करेगी, जो हमने पहले इनिशियली अपने एक किसी भी रियासत के कोर नेशनल इंटरेस्ट की बात की थी। तो 2015 से जब से हमने सीपैक साइन किया है एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स पे फोकस कर रहा है, मतलब कि वो अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अपने उनके साथ जो ताल्लुकात की बुनियाद है वो इकोनॉमिक बेस्ड है, ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक ताल्लुकात है, और सीपैक उसकी बुनियाद बनी। सीपैक की के बाद हमने ये अपने फॉरेन पॉलिसी में एक शेयर्ड इकोनॉमिक विजन लाया कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं हम उनके साथ मिल के एक इकोनॉमिक विजन अचीव करना चाहते हैं। तो सीपैक इज अ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेम्प्रेरी।
1: सर, पाकिस्तान ने चाइना के साथ तो सी पैक साइन किया हुआ है, चाइना के अलावा पाकिस्तान ने और किन कंट्रीज़ के साथ अपनी इकोनॉमिक इनिशिएटिव के लिहाज से साइन किए हुए ट्रीटीज़ वगैरह?
2: हाँ, तो हमारे बेसिकली प्लान जो है सी पैक का पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ये है कि जब सी पैक इस्टेब्लिश हो जाता है कम्प्लीट, जो कि अब 2035 तक सी पैक की डेट है कि वो कम्प्लीट होगा, सी पैक की कम्प्लीशन पे पाकिस्तान ये रूट सेल करेगा टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ताकि वो इस रूट को यूज़ करके अपनी ट्रेड को एनहेंस कर सकें। अगर आप स्पेसिफिकली एग्रीमेंट्स की बात करें तो सी पैक से पहले से पाकिस्तान के कुछ एग्रीमेंट्स हैं जैसे टापी, कासा, आईपीआई जो कि ट्रांसलेट हो गया इनटू द आईपी लेटर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो पाकिस्तान के ये कुछ एग्रीमेंट्स जो कि उसने लेट 1990s में किए थे वो हमें हेल्प करते हैं जो इसका शेयर्ड इकोनॉमिक विजन है उसको अचीव करने में अलॉन्ग विद द सी पैक। तो सी पैक के बाद पाकिस्तान उन सब के ऊपर उसको रिवाइव करने पे और फोकस करने पे काम कर रहा है। इसी रेफरेंस में एक उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर है जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा विद द सी पैक का जो रेलवे कॉरिडोर है ताकि सेंट्रल एशिया से गवादर तक ट्रेड रूट इस्टेब्लिश हो सके। तो देर आर सच न्यूमरस एग्रीमेंट्स जो कि पाकिस्तान अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साइन कर चुका हुआ।
1: जी सर, हम एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं, उसके बाद हम वापस आके मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो सामीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मिलते हैं आपसे। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू दी एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। तो जी सर, हम सी पैक के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान का इसके साथ कैसा ताल्लुक है। आपने बताया कि पाकिस्तान के पास रोड इनिशिएटिव है, पाकिस्तान अपनी ट्रेड इनहेंस कर सकता है इसके थ्रू, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का सिर्फ इकोनॉमिक ही पर्सपेक्टिव से फायदा है या कुछ और भी फायदा है, और दूसरी साइड पे चाइना को सी पैक से क्या फायदा है, चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है।
2: ओके, क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है, जिसको समझने के लिए हमें अपने दिमागों में ग्लोबल मैप को कुछ लाना पड़ेगा। पहले इसको, आपके सवाल के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हम उनको एक एक करके एड्रेस करते हैं। सो फर्स्ट यू टॉक अबाउट कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा कुछ कोई और बेनिफिट्स हैं इससे क्या नहीं। कंटेम्पररी पाकिस्तान इज लुकिंग टूवर्ड्स एन इकोनॉमिक बेनिफिट्स और रीजनल इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द पाकिस्तान, बट ऑल अराउंड द रीजन जो है वो उसके एक रीजनल बेनिफिट्स हैं। और अगर पाकिस्तान की रीजनल इंटीग्रेशन बिल्ट होती है वाया सी पैक विद चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और इवेंचुअली इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ द सी पैक, तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अहमद, वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ पाकिस्तान अपने आप को इन्विजन करता है। अच्छा चले, हम इसको रीफ्रेस करते हैं कि अगर वी टॉक अबाउट द सी पैक, तो और शेयर्ड इकोनॉमिक विजन, जो कि पाकिस्तान का भी फॉरेन पॉलिसी में पॉइंट है, और शेयर्ड इकोनॉमिक विजन तीन बेसिक पॉइंट्स पे फॉल करता है। पहला कि पाकिस्तान इज़ एट क्रॉस रोड्स, कि पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को, रीजन्स को अपने साथ में लाता है। हमारे एक तरफ साउथ एशिया है जो इंडिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, एक तरफ सेंट्रल एशिया है वाया अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा, और एक तरफ हमारे पास मिडल ईस्ट है वाया ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, राइट। और फोर्थ साइड वी हैव चाइना, एंड ऑन द फिफ्थ साइड वी हैव इंडियन ओशन। तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान अपने आप को मल्टीपल रीजन्स के बीच में पाता है, और इस वजह से पाकिस्तान के बारे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इज़ एट क्रॉस रोड्स। अच्छा, क्रॉस रोड्स होने की वजह से पाकिस्तान वॉन्ट टू बी अ ट्रांजिट ट्रेड कंट्री। ट्रांजिट ट्रेड कंट्री से मुराद ऐसा ममालिक कि जिसके बीच में से बाकी ममालिकों की ट्रेड जो है वो गुजरे। चाइना को अगर इंडियन ओशन जाना है तो पाकिस्तान उसको रास्ता प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया को अगर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है तो पाकिस्तान उसको रास्ता प्रोवाइड कर सकता है। चाइना को अगर ईरान के साथ ट्रेड करनी है तो हम उसको रूट प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे पाकिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड कंट्री बनने का ख्वाब है वो कंप्लीट होता है। ट्रांजिट ट्रेड कंट्री बनने से पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि जिपर ऑफ द रीजन। अगर हम एक ट्रांजिट ट्रेड कंट्री का पर्पज सर्व कर रहे हैं और उससे पूरा रीजन जो है वो हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पे बिल्ड कर, हमारी भी उन पर डिपेंडेंस होगी सिंस उनकी ट्रेड की वजह से पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन वो भी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेंगे बिकॉज के पाकिस्तान एक रूट उनको प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ट्रेड। तो ऑल टुगेदर ये तीन पॉइंट्स के एट क्रॉस रोड्स, ट्रांजिट ट्रेड कंट्री और जिपर ऑफ द रीजन, ये तीनों पॉइंट्स पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को एनहेंस करते हैं, जो कि वाया सी पैक हो रहा है। जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि पाकिस्तान को सी पैक से क्या बेनिफिट है। टॉकिंग अबाउट चाइना, चाइना ने 1960s में माओ ने बोला था कि चाइना, पाकिस्तान इज चाइना साउथ वेस्टर्न गेटवे, कि पाकिस्तान एक चाइना को रूट प्रोवाइड करता है टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और वो रूट अब सी पैक के थ्रू 2013-15 के बाद से हमने चाइना को प्रोवाइड करना शुरू किया है। चाइना को अगर इंडियन ओशन में आना होता है तो आपको पता है, आप IR के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि उनको एक लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़ता है, साउथ चाइना सी से पैसिफिक ओशन से होते होते वो इंडियन ओशन में पहुंचते हैं। तो वाया सी पैक चाइना की वो जो मुसाफत है वो बहुत कम हो जाती है, और वो वाया पाकिस्तान डायरेक्ट इंडियन ओशन में जाता है। चलो मैं आपको इसका न्यूमेरिक डाटा देता हूँ कि एक ट्रेड, चाइनीज ट्रेड, जो कि इंडियन ओशन से चाइना जाने में उसको 3-4 महीने लगते हैं, वट डू यू थिंक अगर वो गवादर से, पाकिस्तान से चाइना काशकर पहुंचेगी तो कितने दिनों में पहुंचेगी, वाया रोड या वाया ट्रेन? कोई आपका रफ आइडिया है अगर वो 3-4 महीनों से उसका सफर कितना कम हो जाएगा अगर वो पाकिस्तान से होता?
1: सर वो तो फिर महीनों से दिनों में बात चली जाएगी।
2: Exactly. अगर कराची से हमें इस्लामाबाद या कराची से हमें गिलगित जाने में जितना टाइम लगेगा, और अगर वो ट्रकों की मूवमेंट है तो थोड़ी कम हो जाएगी, विच मीन्स के वो ट्रेड जो चाइना की इंडियन ओशन से चाइना जाती है 4 महीनों में, वो वाया पाकिस्तान 1 महीने में जा सकती है। और साथ साथ वुड बीन वर्किंग ऑन अ रेलवे कॉरिडोर, एक रेलवे ट्रैक बिछाने की बात चल रही है, तो उससे वो 2 दिन में पहुंच जाएगी। मतलब उसकी 4 महीने की ट्रेड 2 दिन चाइना पहुंच सकती है। ये उसको बेनिफिट है सी पैक से, जो आपका सवाल था कि वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं विद इन द पाकिस्तान।
1: जी सर, सी पैक के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगु होगी, मुझे यकीन है कि सुनने वालों को काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब सर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अपने हमसाए ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि हमसाए किस हमसाए वाले के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं और किसके साथ कैसे रखने हैं।
2: So, अगर हम वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी, तो उसकी जो बेसिक्स हैं वो 1947 में तय हो गई थी कि हमारी बैरुल अक्वामी ताल्लुकात की जो पॉलिसी है वो कैसी बनेगी, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। और उसकी एस्पिरेशंस हम लेते हैं कायदे आजम के स्पीचेस से, और अगर हम उनको समराइज़ करें तो वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप विद ऑल, एनिमिटी विद नन, और नॉन इंटरफेरेंस, नॉन अग्रेशन। तो कायदे आजम ने कुछ इस तरह की स्पेसिफिक पॉलिसीज बताई हैं हमें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, और उसी के बेस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आपको शुरू में रेफर कर रहा था कि जो इसकी तश्कील के लिए काम आते हैं, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं हाईलाइट करूँ तो उनमें से एक ये कि फ्रेंडशिप विद ऑल और स्पेशली द मेजर पावर्स एंड इमीडिएट नेबर्स। तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में मेजर पावर्स और इमीडिएट नेबर्स पे बड़ा फोकस करता है, और इसीलिए पाकिस्तान ऑलवेज वांट टू एस्टैब्लिश द गुड रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। हाँ, कुछ रीजनल, कुछ ग्लोबल, कुछ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस बीच में आ जाते हैं। अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो विद चाइना वी ऑलवेज हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशंस, और वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग उसके साथ एस्टैब्लिश है। विद अफगानिस्तान देयर आर सम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑन द बॉर्डर, और उसके अलावा कुछ टेररिज्म के इश्यूज। विद ईरान देर आर सम इंटरनेशनल जो

0: दिखी है, तो आपके हिसाब से, आपके हवाले से फॉरेन पॉलिसी की स्टडी क्यों जरूरी है?
1: अच्छा अहमद, फॉरेन पॉलिसी या इन जनरल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को इस टाइम पे एक लेमैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। आपके पास सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और रैंडम आपके पास इवन ऑन द न्यूज़ मीडिया समटाइम्स इन्फॉर्मेशन जो है उसके क्रेडिबल सोर्सेज की कमी होती है। तो उस पैराडाइम में कि अगर जब आप फैमिलियर नहीं होंगे इनके की टर्म्स से और इनकी चीज़ों से, तो फिर आप जो सुनोगे, अगर आपने किसी सोशल मीडिया से सुना, किसी बंदे से, राह चलते बंदे से सुना, तो आप उसको सच मान लोगे। तो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का दौर और प्रोपागेंडा का दौर है, तो एवरीवन नीड टू नो सम द बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस एंड सम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पॉलिसीज विच पाकिस्तान इज बीइंग एस्टैब्लिश, और ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन से बच सको। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लेमैन।
0: जी सर, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ही इस्तेमाल पजीर होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई। मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी कि फॉरेन पॉलिसी कैसी, पैक क्या है और फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छे से मुझे तो समझ आया। तो उम्मीद है कि सुनने वालों को भी आया होगा।
1: थैंक यू अहमद फॉर हैविंग मी, इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, अच्छा लगा आपके साथ बात करके।
0: जी सर। जी तो सामीन, आज के प्रोग्राम का अख्ताम यहाँ पर होता है, और अगले प्रोग्राम में हम एक नई मालूमात के साथ, एक नए टीचर के साथ हाजिर होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। और इस वक्त मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ जो सुनाई दे रही है और आप लोग कह रहे होंगे कि यार इसको तो चुप करवाओ, हमें गाना और हमें कवालियाँ सुनने दो। लेकिन पता है क्या, मेरा भी गुजारा नहीं है बोले बगैर, और आप लोगों को भी पता होगा इस बात का, क्योंकि वो होता है ना आरजेस का यही मसला होता है कि उनको एक दफ़ा आप माइक दे दो और फिर वो उनको तो चुप कराना एक वो होता है ना नामुमकिन वाली बात हो जाती है। खैर, हम लोग आज नुसरत फतेह अली खान को डिस्कस कर रहे हैं, और या तो आप लोग यही कह रहे होंगे या तो नुसरत को डिस्कस करें या फिर उनकी आवाज़ सुनाएं। तो मैं आप लोगों को फिर यही करती हूँ कि मैं इससे पहले कि मुझे अपने लिसनर से डांट पिट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लिसनर जो हैं वो मुझसे नाराज़ हों, और एक दिल के बहुत करीब होते हैं जिनकी वजह से आप कुछ बने होते हो। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से आप लोगों की ही पसंद की बात करूँगी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी सिर्फ नुसरत को डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं अपनी बोंगियाँ नहीं मारना चाहती। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि नुसरत पे वापस आते हैं, और हम डिस्कस कर रहे थे, ही इज़ बेसिकली बॉर्न इन फैसलाबाद। तो उनका जो फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस हुई थी वो एट द एज ऑफ 16 हुई थी, अपने फादर के चेलम पे उन्होंने सबसे पहली परफॉर्मेंस दी थी 16 साल की उम्र में। और उसके बाद ही बिकेम द हेड ऑफ़ द फैमिली कवाल 1971 में, क्योंकि वो जिससे मैंने पहले कहा कि ये पिछले 600 सालों से चल रहा था। तो जब उनके फादर की डेथ हुई तो उसके बाद बीइंग द एल्डर वन और जिनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई गई थी, तो इवन दो ही वॉज जस्ट 16, लेकिन उन्होंने ये जो फैमिली नेम है उसको संभाला, और उन्होंने फिर साइन किया एक एजेंसी के साथ। क्योंकि पता है क्या, जब आपका एक ऑलरेडी नाम बना होता है तो फिर आपको ज़्यादा हाथ पाँव मारने भी नहीं पड़ते लोग, बल्कि आप लोगों के पास आते हैं कि हमें मतलब कि आप लोगों के साथ साइन करना है। और आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि आपकी अगर फैमिली से रिलेटेड कोई आप लोगों का ट्रेडिशन चल रहा है तो उसमें फिर इस तरह से आपको आसानी होती है। खैर, इन्होंने इंग्लैंड में 1980s के अर्ली एरा में उन्होंने अपना काम शुरू किया, और उन्होंने वहाँ पर डिफरेंट एल्बम्स और उसके साथ साथ मूवीज़ के लिए उन्होंने गाने जो थे वो यूरोप, इंडिया, जापान, पाकिस्तान और US में उन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए, और ऑब्वियसली वो एयर हुए। और उन्होंने कोलैबोरेशन और एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे किए अपने सारी ज़िंदगी में, और ही बिकेम अ वेल नोन वर्ल्ड म्यूज़िक आर्टिस्ट। और उसके अलावा ही टूर्ड एक्सटेंसिवली, उन्होंने मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ एक जगह बैठ के सिर्फ गाने रिकॉर्ड करते गए और उसको ऑनर करते गए, बल्कि साथ साथ उन्होंने डिफरेंट जगहों पे वो उन्होंने परफॉर्म करते गए। वो टूर्स होते हैं आप लोगों के, जाते कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो उन्होंने किए, और ओवर 40 कंट्रीज़ में उन्होंने परफॉर्म किया। और इन एडिशन टू दैट, उन्होंने अपने कवाली म्यूज़िक में जो है, ही ऑल्सो हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन साउथ एशियन पॉपुलर म्यूज़िक। साउथ एशियन बेसिकली वो थोड़ा सा पाकिस्तानी पॉप या फिर थोड़ा सा हॉलीवुड टच जिसमें आ जाता है, उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि उन्होंने वो ये बात है कि जब आपके पास टैलेंट हो तो आपको हर स्टाइल और हर जॉनर को टेस्ट करना चाहिए, और जब आप नुसरत फतेह अली खान हो तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं रोक सकता, और आप जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो सोना बन जाती है। और इनकी एक मज़े का मैं फ़न फैक्ट ऐड करती चलूँ कि 1990s में इनकी जो मशहूर वो एक फैमिली कवाली है दमस कलंदर, उसको इन्होंने रीन्यू किया। और इसमें एक मज़े की सबसे एक डिफरेंट बात यह है कि जो हमनवा कवाल होते हैं, जो पीछे बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं, या फिर वो जो एक वो कोर्स सा होता है कि वो आपको साथ साथ ट्यून इन मिलता रहता है, और वो एक अलग सा ही एक समा होता है, वो आवाज़ जो गूंज रही होती है, ऑब्वियसली जो मेन सिंगर होते हैं उनके तो बिल्कुल आगे प्रॉपर क्लियर आवाज़ होती है, लेकिन जो पीछे होते हैं ना, आई गेस वो ऑलवेज़ वो ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करता है, क्योंकि वो उसका लिंक बनाना और वो एक बहुत खूबसूरत साउंड करता है। तो वो फ़र्स्ट टाइम जो थे वो फीमेल हमनवा कवाल थे, जिसकी वजह से इनको बहुत रिकग्निशन मिला, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनकी आवाज़ तो वैसे ही अच्छी थी, लेकिन एक इनकी जो कवाली थी उसको रीन्यू भी किया गया, तो इसलिए लोगों को इसलिए भी पसंद आई। और फिर साथ साथ एक ये बहुत डिफरेंट और मज़े की चीज़ थी कि उनके साथ फीमेल जो थी वो कवाल बैठे हुए थे, बैठी हुई थी, और उन्होंने इसको एक डिफरेंट ट्रेडिशन जो है, बेसिकली ट्रेडिशन मेनली यही होता है कि मर्द हजरात ही होते हैं। मैं अभी भी देखूँ तो मुझे ज़्यादातर के मुझे यही नज़र आते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल कि उन्होंने फीमेल हमनवा कवाल जो थे वो अपने साथ बिठाई थी। तो
मेरा तो ना दिल नहीं कर रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग बातें करने का, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस सुनती रहूँ. तो इस तरह करते हैं कि हम लोग फिर से चलते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और फिर उसके बाद वापस आते हैं और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नुसरत फ़तेह अली खान की करियर लाइफ को. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6.

वेलकम बैक लिसनर, आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में. और एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान को. और हम लोगों ने अभी अभी दम मस्त कलंदर जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुना. और अच्छा, मज़े की बात यह कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान को NFAK भी कहा जाता है, कि वो एक बहुत लंबा नाम है. हम लोगों ने आजकल हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म निकाली भी है, तो हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में.

एन एफ ए के उनके इनिशियल्स जो हैं बेसिकली बस वही लिख देते होते हैं, लेकिन हर नाम की खूबसूरती होती है, हमें उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। तो हम इनके करियर को डिस्कस कर रहे थे, तो 1985 में उन्होंने परफॉर्म किया वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक आर्ट एंड डांस, एक फेस्टिवल होता है लंदन में, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया, और उसके बाद उन्होंने पेरिस में 85 और 88 में परफॉर्म किया, और फिर उन्होंने जापान को विज़िट किया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बेसिकली जापान फाउंडेशन ने इनवाइट भेजा था उनके लिए कि वो आएँ और उनके फेस्टिवल का हिस्सा बने। उसके अलावा एशियन ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होते हैं, और ब्रुकलिन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक न्यूयॉर्क जो है 1989 में, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन जो है उनको वहाँ से मिले, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस थी हमेशा हमारे जहन में, और एक वो ट्रेडिशनल यही होता है कि हम लोग जो बहुत कल्चरल लोग होते हैं सिर्फ वही कवालियाँ सुनते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इंस्पायर होते हैं बिल्कुल हट के डिफरेंट म्यूज़िक से, और उन्होंने भी इस चीज़ से मतलब के फ़ायदा उठाया, इसको इंजॉय किया। अगला शो भी जो नेक्स्ट वीक हम लोग शो करेंगे वो हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान पर ही शो करेंगे। तो अब हम लोग और डिटेल में बातें करते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान से रिलेटेड, और उनके मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने डिफरेंट जगहों पर जाके परफॉर्मेंस की, और इंटरनेशनली उन्होंने परफॉर्मेंस की, लेकिन थ्रू आउट हिज करियर उन्होंने इसको अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना के रखा, क्योंकि बात ये थी कि आप घर बैठे बैठे मशहूर नहीं हो सकते, या फिर आप एक स्टूडियो के अंदर बैठे बैठे अपने आप को अपने गाने रिकॉर्ड करके बस रिलीज़ करते रहो, दैट इज़ नॉट हाउ यू प्रमोट योरसेल्फ प्रमोशन के, क्योंकि टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ आई एम स्टडिंग अबाउट इट, और अब मुझे पता चलता है कि अपने आप को मार्केट करने के तरीके बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और सिंगर्स और जिनका ऑब्वियसली पेशा ही यही होता है तो वो इसको जहन में रखते हैं, इसलिए कॉन्सर्ट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अपने अपने गानों को रिफ्रेश करते रहना कोई एक मेडले बना के या फिर कोई रिमिक्स करके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अब ऐसा करेंगे कि हम लोग जब ब्रेक पर जाएंगे तो मैं एक कोई हम रिमिक्स सुन लें नुसरत फ़तेह अली ख़ान का, ताकि आप लोग को ये भी अंदाज़ा हो कि सिर्फ ये नहीं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक स्पेसिफिक टाइप की कवालियाँ ही करते रहे, बल्कि वो एक उन्होंने रिमिक्स भी, क्योंकि हर दौर के साथ साथ वो अपडेटेड भी रहे हैं, उन्होंने अपने इंटरनेशनली और उसके अलावा पर्सनली हिमसेल्फ उन्होंने डिफरेंट रिमिक्स भी रिकॉर्ड करवाए म्यूज़िक के साथ, इलेक्ट्रॉनिक और रॉक और पॉप हर तरह की म्यूज़िक को उन्होंने टेस्ट किया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। और फिर ऑब्वियसली एक वो सीरीज़ उनकी स्टार्ट हो गई, एंड ही केप्ट ऑन परफॉर्मिंग इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट कॉन्सर्ट्स उन्होंने किए, और उसके अलावा फिर उन्होंने मूवीज़ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मूवीज़ में उन्होंने गाने गाना शुरू किए, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक जैसे कहते हैं रियल वर्ल्ड में उन्होंने कोलैबोरेशन शुरू की एक कैनेडियन गिटारिस्ट है माइकल ब्रूक के साथ, और फिर उन्होंने डिफरेंट ऑब्वियसली और भी लोगों के साथ कोलैबोरेशन की, और वेस्टर्न कंपोजर्स जिसमें रॉक म्यूजिशंस भी थे, तो उन्होंने इन कोलैबोरेशंस का उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स से लीड सिंगर्स से उनके साथ उन्होंने गाना गाया, और उनके जो गाने थे उनको एक और तर्ज और एक और सुनने का एक और उनको खूबसूरत वे और एक बहुत खूबसूरत किस्म का एक डिफरेंट एंगल मिला उनके उन गानों को। और उसके बाद उन्होंने एक मूवी थी डेड मैन वॉकिंग, उसके लिए उन्होंने साउंड ट्रैक गाया, और उन्होंने फिर अपने वोकल्स प्रोवाइड किए फॉर द मूवी द प्रेयर साइकिल, और उनके गाने जो थे, क्योंकि ये बहुत मज़े की चीज़ है कि पर्सन हु सिंग्स इन कंप्लीट उर्दू और पंजाबी, उन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया, और उन्होंने ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर हिज एल्बम ग्रैमी अवार्ड जो बेस्ट वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, और उसके बाद उनकी जो एल्बम थी इंटॉक्सिकेटेड स्पिरिट वो भी ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ट्रेडिशनल फोक एल्बम इन 1997 उसके लिए नॉमिनेट भी हुए थे। तो ग्रैमी अवार्ड बहुत बड़े अवार्ड होते हैं, और इसमें रिकग्निशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आपको पता चले कि लोग आपको इतने बड़े लेवल तक जानते हैं और आपको नॉमिनेट किया जाता है, तो इससे
سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ بگ ہز پریزنس اینڈ ہز امپورٹنس ہیز بن ان دا ورلڈ. اور اب اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ سنتے ہیں نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک اور خوبصورت آواز میں خوبصورت سا میوزک. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6 UCP کی دنیا.

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीबी की दुनिया। आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में, और इस वक्त आप लोग सुन रहे थे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी बाय नुसरत फतेह अली खान। और मैं वही बात है कि मैं इतना इन्वॉल्व थी नुसरत फतेह अली खान को सुनने में कि मैं आप वापस आई तो मुझे लगा कि आई एम सपोज टू डू अ कॉन्सर्ट ऑन हिज सॉन्ग्स, लेकिन नो फातिमा ऐसा नहीं होता। खैर अभी आप लोगों ने जो सुनी, जो भी आवाज़ सुनी, जो म्यूज़िक सुना, ये जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को जिक्र किया था कि इनके रीमिक्स जो था ये माइकल ब्रूक के साथ जो उन्होंने गाया था, ये वो उसका उनके बेसिकली गाने का रीमिक्स जो था वो इन्होंने इसको परफॉर्म किया। और उसके बाद अभी जो इसके बाद भी जो आप सुनेंगे, जो जिससे हम इख्तिताम करेंगे, तो उसमें भी आप लोग सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान का ही रीमिक्स में, क्योंकि रीमिक्स सुनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को ना अंदाज़ा होगा कि म्यूज़िक जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है और पुरानी चीज़ों कैसे आप रीन्यू कर सकते हैं। और सिर्फ पुरानी चीज़ें, जैसे हमारे पास जो डब्बे वगैरह पड़े होते हैं, हम सिर्फ उनको नहीं रीन्यू कर सकते, हम लोग म्यूज़िक और आवाज़ और गानों और कवालियों को भी रीन्यू कर सकते हैं। और क्योंकि शो का हमेशा की तरह मुझे यही होता है कि बस वक्त जो है ना गुजरता रहता है और पता भी नहीं चलता, और क्योंकि शो का पता भी नहीं चलता, और प्लस आज हम शो जो कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खान पे कर रहे हैं, और ये शो ऐसा है कि आप जो ना बोलते रहो और आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है। ये मेरे साथ तब होता था जब हम लोग मैं और ईमान ज़िया जो है हम लोग शो करते थे विजन ऑफ कल्चर्स में, हमारे पास तब भी बहुत डाटा होता था और हम लोग बोलते रहते थे। और मुझे याद है रमज़ान में भी हम लोगों ने जब शो किया था तो यही होता था कि हम लोग बोली जा रहे हैं और फिर एकदम से पता चल जाता कि शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग, क्योंकि मैंने वर्ड्स ट्रेंडिंग भी डिस्कस कर लिया, नुसरत फतेह अली खान को भी हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँ वो इस वक्त कम होगी। खैर आज के शो में, क्योंकि उनकी एक लाइफ स्टोरी और उनकी एक फ्रॉम डे वन टू डे लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर नेक्स्ट शो में हम लोग ज़रूर इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इनके जो डिफरेंट अवार्ड्स हैं इनकी, और सिर्फ ये नहीं है बल्कि उसके बाद इन्होंने जो रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और इनके जो लेगेसी इन्होंने छोड़ी है, हम उसको लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते मैं नुसरत फतेह अली खान के बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस की उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म्स में भी उन्होंने गाना शुरू किया। अपनी डेथ से कुछ अर्सा पहले उन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स में भी, उन्होंने जितना मूवी थी और प्यार हो गया, इसमें उन्होंने अपना एक गाना जो है वो गाया था। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट म्यूज़िक कंपोज किया फॉर मूवी ज़िंदगी झूम कर और कच्चे धागे जो मूवी थी उसके लिए उन्होंने, बॉलीवुड मूवी थी उसके लिए उन्होंने कंपोजिशन की, और धड़कन मूवी है उसके लिए उन्होंने गाना गाया, दिल लगी एक मूवी थी उसके लिए उन्होंने गाना गाया, और धड़कन के लिए एक बहुत मशहूर जो गाना है जो हम लोग सुनते रहते हैं, दूल्हे का सहरा, हम लोग हर शादी में हमने लाजमी ये गाना सुना है। तो वही बात है कि उन्होंने एक ऐसा अपना ट्रेडिशन छोड़ा है कि कोई शादी कम्प्लीट ही नहीं हो सकती इनके इस गाने के बग़ैर। और उन्होंने आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसे बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने कॉम्पोजिशंस और गाने लिखे और गाए। और अगर हम इनकी बात करें कि मतलब कि शादी इनके, जैसे मैंने कहा कि शादी वाले गाने इन्होंने गाए साथ साथ, क्योंकि हम इनकी कवालियाँ सुनते रहते हैं, तो इन्होंने बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मेलोडियस इन्होंने कवालियाँ, और स्पिरिचुअल और सूफ़ी जोन में भी इन्होंने बहुत सी कवालियाँ जो हैं वो लिखी और गाई। और उसके अलावा इन्होंने अपनी 50th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की, और उसमें AR रहमान ने एक इनके मतलब कि गुरुज़ ऑफ पीस के नाम से एक उन्होंने एल्बम रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने नुसरत फतेह अली खान का भी गाना जो है वो इंक्लूड किया था। तो वही बात है कि वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई लेकिन उनका ट्रेडिशन और उन्होंने जो
म्यूज़िक के थ्रू प्यार मोहब्बत छोड़ा था वो अभी तक कायम है. तो नुसरत, जैसे मैंने शो के स्टार्ट में बोल दिया था कि मैं जितना बोलूँगी वो कम होगा, लेकिन अच्छी बात है कि हमने इस शो को दो में हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया शो को, ताकि फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग ने आज हम लोगों ने उनकी एक लाइफ स्टोरी को डिस्कस कर लिया, अगले शो में हम लोग इनकी लेगेसीज और इनकी हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग. नुसरत फ़तेह अली खान के साथ ही मुलाकात होगी, तो आप लोग सुनते रहे FM 92.6. अल्लाह हाफिज़.

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: Hi guys and welcome back to Sur Kahani on FM 92.6 UCP ki duniya. मैं हूं आपका होस्ट और शम्स एंड एज ऑलवेज आज हम बात करेंगे म्यूजिक के उस पहलू के बारे में जो सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि फील भी किया जाता है. आज की एपिसोड इसलिए भी खास है बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ म्यूजिक फॉर सेंचुरीज लेकिन आज भी उसकी आवाज में वही फ्रेशनेस और मैजिक है द फ्लूट. फ्लूट का नाम सुनते ही शायद हमारे जहन में सबसे पहले एक सॉफ्ट सूदिंग और ऑलमोस्ट मैजिकल साउंड आती है बट देयर इज सो मच मोर टू दिस इंस्ट्रूमेंट देन दैट. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिना वर्ड्स के भी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है. कभी खुशी, कभी उदासी, कभी सुकून और कभी वो फीलिंग्स जिन्हें हम शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते. From classical music to folk, film music to contemporary compositions, flute ने हर जगह अपनी एक unique identity बनाई है और शायद इसीलिए जब flute बजाई जाती है ऐसे लगता है कि music को feel किया जा रहा है. और अगर बात करें कि इस instrument को आवाज़ देने वाली शख्सियत की तो आज luckily हमारे साथ studio में मौजूद हैं Sir Akmal Qadri who is a very talented flutist whose journey with music has been truly interesting. Sir Akmal Qadri ने नूर जहां से लेके मेहदी हसन साहब तक बहुत से artists के साथ काम किया है. He has been playing the flute for over 40 years and पिछले 25 साल से All Pakistan Music Conference में भी बजा रहे हैं. Sir Akmal Qadri की journey हमें ये समझने का मौका देती है कि फ्लूट को सिर्फ प्ले करना और फ्लूट को एक्चुअली फील करना इन दोनों में क्या डिफरेंस है. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज सर अकमल आज हमारे साथ बैठकर म्यूजिक, फ्लूट और उनकी अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में हमारे से बात करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू वेलकम टू सुर कहानी सर.
1: थैंक यू अरब, बहुत अच्छे. थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आप इधर आके और आपकी प्यारी प्यारी बातें सुन के. और माशाल्लाह आप खुद बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत प्यारा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं.
0: थैंक यू सर. थैंक यू सर. हमारे लिए भी बहुत आज एक लकी बात है कि आज आप हमारे साथ हैं बिकॉज आई नो आप किस तरह आपका टैलेंट है, आपका जो काम है दैट इज बियॉन्ड एनी वर्ड्स.
1: माय प्लेजर. थैंक यू
0: सर. सबसे पहले आई वुड जस्ट आस्क वन स्मॉल क्वेश्चन कि आपकी फ्लूट के साथ जर्नी आज से 40 साल पहले कैसे स्टार्ट हुई.
1: टू लॉन्ग आई थिंक मुझे बिकॉज यू नो माय फादर वाज ग्रेट फ्लूट प्लेयर उस्ताद साईनिता कादरी जिन्होंने हीर रांझा, कोयल, झूमर, मिर्जा जैट कुछ 25-30 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और टॉप के गाने जो है ना उन्होंने बजाए हुए.
0: वाह वाह.
1: फुल टॉप के गाने जितने भी आप टॉप के गाने सुन रहे हैं ना हमारा जो हेरिटेज जो हमारा म्यूजिक है वो सारा जो है वो मेरे अब्बू ने उसमें फ्लूट बजाया हुआ है. तो वो आए थे इंडिया से दिल्ली रेडियो से. पहले वो क्लैनेट बजाते थे उसके बाद उन्होंने फिर इधर आके पाकिस्तान में फ्लूट बजाया और फिर फ्लूट बजाते बजाते उन्होंने इतना नाम बना लिया फिर उनको प्राइड परफॉर्मेंस मिला. फिर जब वो अल्लाह को प्यारे हुए तो फिर मैंने इसको पकड़ लिया और उनसे सीखा. फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी वफात के बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की और स्ट्रगल में बहुत ही सीखा. बड़े बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत बहुत बड़े लोगों से मिलने का शरफ हासिल हुआ, बहुत बहुत बड़े लोगों से को देखने का मौका मिला जिनमें जैसे आपने कहा नूर जहां जी, मेहदी हसन और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे अब्बा के जो कॉलीग थे जितने भी बड़े बड़े लोग जिनमें जितने भी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरान थे वो भी उनसे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला. फिर मैंने अपना सबसे पहले मैंने अपनी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से अपना आगाज किया तालीम का. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मैंने अप्लाई किया अपना म्यूजिक बेस पे फ्लूट तो वहाँ पे एक उस्ताद फरानी साहब होते थे जो कि फ्लूटिस्ट खुद भी थे.
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी.
1: तो उन्होंने मुझे रखा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रखा, आई डोंट नो. लेकिन खैर मैंने कहा चलो अब तो इसको कंटिन्यू तो करना ही है क्योंकि मैंने तो अपने अब्बा का मिशन को पूरा करना था. तो मैंने फिर जनाब स्टार्ट लिया. मैंने कहा मैं मजीद पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ फ्लूट को दूंगा. फिर अपने अब्बा के क्लोइक से मिला, फिर वो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, अपने अब्बा के शागिर्दों से सीखा और बहुत कुछ सीखते सीखते फिर मैं रेडियो पाकिस्तान में चला गया. रेडियो पाकिस्तान में सीखते सीखते फिर मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे 25 साल गुजार दिए. वो फिर 25 साल मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे काम किया, बहुत बहुत लेजेंड लोगों के साथ काम किया जिनमें मैक्सल से कोई भी नहीं बचता, आपके जो ए नैयर साहब और पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े लोग, गुलाम अली खान साहब, गुलाम अब्बास, मेरा चना, फिर अपना, ये सब लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैडम नूर जहां जी और मेहदी हसन और जितने बड़े बड़े लीजेंड हैं तकरीबन मैंने और इसकी ये काम किया। और अब ये है कि सोलोस बजा रहा हूँ आजकल, रागज से मेरा दिल लगा हुआ है आजकल, और मौसीकी में जो है वो जो रागज में हम डीपली ज़रा मज़ा लेके, हाँ जो क्योंकि वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं,
0: ऐसे ही है,
1: तो हमारे जो हमने जो काम कर लिया उसके अगले जहां जो है वो रागज है तो वो रागज पे अब वर्किंग चल रही है, काम चल रहा है।
0: वाह वाह वाह वाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। हम इस पे बात आगे कंटिन्यू करते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, तो तब तक के लिए सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। दिस इज सुर कहानी।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Hi guys and welcome back from the break. हम इन कॉन्वर्सेशन है विद सर अकमल कादरी. सर आपसे हम बात कर रहे थे अबाउट योर जर्नी विद म्यूजिक और आप बता रहे थे कि आपने अब रागास के ऊपर काम अपना शुरू किया हुआ है. यूव वर्क रागास पे भी अब एंड आपने ऑब्वियसली फिल्मी म्यूजिक में तो काम किया ही है. तो रागास में और फिल्मी म्यूजिक में जब आप डिफरेंस कोई देखें तो मेजर डिफरेंसेस कहाँ आ जाते हैं दोनों की प्लेइंग में?
2: देखें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का एक इंटरव्यू है, उन्होंने कहा है कि फोक म्यूजिक इतना रिच म्यूजिक है कि फोक म्यूजिक से सब कुछ निकलता है. जैसे राग भोपाली है वो एक कश्मीर का फोक म्यूजिक है, कश्मीर का एक फोक म्यूजिक है राग भोपाली. इसी तरह जितने भी फोक म्यूजिक हैं फोक म्यूजिक से क्लासिकल निकला है. तो फोक म्यूजिक इतना रिच म्यूजिक है उन स्केल्स में उन उन उन ठाठों में उन उन सुरों में से बुजुर्गों ने जो क्लासिकल म्यूजिक के कर्ता धरता थे उन्होंने उनको उठा के उनको मेक कर दिया.
1: वाह.
2: जो मेकर थे
1: वाह वाह.
2: मतलब कि जैसे शाहाना है, राग दरबारी है, राग कोई भी लगा ले, एमन है, कोई भी है, वो डिफरेंट फोक दोनों से निकले हुए रागज हैं. अब देखें हजरत अमीर खुसरो ने राग एमन आजाद किया और कितने सारे रागज हैं जो कि
1: दरबारी का अक्सर तानसेन को दिया जाता है.
2: तो ये चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी समझने वाली हैं कि हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक में जो लोग हैं वो क्लासिकल को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हालांकि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो फोक म्यूजिक से निकला है. तो फोक म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: राइट.
2: हाँ, फोक म्यूजिक बहुत रिच म्यूजिक है. तो उसके लिए हमारी इतनी रिसर्च नहीं है. आज से 500 साल पहले जैसे कि लाइक लट्ठे दी चादर आप देख लें, ये कोई 100 साल पुराना होगा. ठीक है जी. इससे पहले चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, 500 साल पहले चले जाएं, तो क्या क्लासिकल म्यूजिक जो है वो कितने राग है? अब 5000 राग जो शेड्यूल में लिखे हुए हैं, अभी किताबें जो पढ़ी हुई हैं, जो रिसर्चेज हुई हैं, जिस तरह के ठाकुर नवाब साहब हैं बहुत पुराने पंडित हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी मारफल नगमात, बहुत बड़ी किताब जो कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बिकी किताब, वो उसका नाम था मारफल नगमात. और एक किताब थी संगीत, वो किताब में मेरे पास दोनों किताबें पढ़ी, मेरे अब्बा को बड़ा शौक था इस रिसर्च करने का ना रागों को, तो मैंने वो देखे कि 5000 राग जो है ना वो शेड्यूल पे लिखे हुए हैं. तो डिफरेंट स्केल्स हैं, वो रागस नहीं है वो स्केल्स हैं. तो आप बताएं कि ये कितना वसी काम है, कितना इसमें वसत है, कितना सात सुरों के अंदर कितनी वसत है. यानी कि अगर आप 7 सुर लगाते हैं तो 12 सुर जो है उसमें इतनी वसत है कि वो पूरी दुनिया का जो म्यूजिक है 12 सुरों के अंदर वो इतना वसी है कि ख़त्म नहीं हो रहा, अभी तक स्टिल चल रहा है. तो जैसे आपने कहा कि ये डिफरेंट क्लासिकल म्यूजिक मौसीकी जो है ना वो हमेशा एक स्पेशल रहा है. तो बाकी ये है कि का मतलब होता है कि एक स्केल के अंदर फिक्स रहना.
1: ठीक है.
2: अगर 5 सुरों का राग है तो 5 सुरों के अंदर आपने बाहर नहीं निकलना. सारे गा पा दा सा सा दा बा गा रे सा, तो ये क्या है, आपने इसके अंदर रहना है. सारे गा रे गा पा गा पा दा सा सा दा पा गा रे सा सा सा सा रे रे रे गा गा गा पा वा दा दा दा सा दा दा, जो भी आपने करना है इसके अंदर ही करना है. सारे गा ये नहीं लगाना आपने नोट, या फिर सारे गा पा दा ये भी नहीं लगाना आपने. तो मींस के मतलब ये है कि आपने उसके अंदर फिक्स रहना है. तो वो फिक्स का मतलब है राग.
1: क्या बात.
2: उसका मतलब है राग. तो अगर हमने इसको मिक्सअप किया तो फिर हम थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, फिर हम इसको लाइट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि वो एक खूबसूरती होगी, बुराई नहीं होगी वो, वो बुरी चीज नहीं कह सकते हम उसको, खूबसूरती कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिक्स रहना तो फिक्स रहने के लिए आपको रियासत करनी पड़ती है, उसके अंदर रहना पड़ता है, दायरे से बाहर एक फन है, इट्स अ फन कि वो आपने दायरे के अंदर अंदर ही रहना है। वो दायरे से आप बाहर जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो भी ठीक है। और जो अगर दायरे से बाहर भी चले जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो भी एक फन है, वो भी एक महारत है, एक अच्छी चीज है। तो आप जैसे 12 सुरों से खेलना जो है वो एक फन है बेसिकली।
1: सर इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फ्लूट है, फ्लूट की इटसेल्फ हिस्ट्री क्या है कि फ्लूट कहाँ से शुरू हुआ और फ्लूट बढ़ते बढ़ते आज जो हमारे पास है वो कैसे बना?
2: यार फ्लूट जो है ये दुनिया का पहला इंस्ट्रूमेंट है जो हमने सुना है, और फ्लूट पे इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, फ्लूट पे इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। सबसे पहले तो हजरत मौलाना रूम ने फ्लूट पे कितनी किताबें लिखी हैं, आप कभी पढ़ें तो आपको पता चले। उसके बाद ये लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट है, इंसान ने जब थोड़ी सी होश संभाली, जब दुनिया में इंसान आया होगा तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है कि उन्होंने इसको बजाया, हिस्ट्री में भी है, लिखा भी हुआ है। और इसी तरह जंगल में जब इंसान डेवलप होता है तो वो लकड़ी से बनी हुई चीज़ों से के साथ खेलता है, जिस तरह कि अभी भी आप अफ्रीका में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उधर जो हबशी होते हैं, वो जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, वो लकड़ियों के साथ कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, मेकिंग करते रहते हैं, फिर उसके साथ ट्राई करते हैं। तो फ्लूट भी इसी तरह मार्ज़े वजूद में आया, इसी तरह उसके अंदर होल्स बना दिए गए, इसी तरह उसके अंदर फूक जो है ना वो डाल दी गई, तो इसी तरह वो उसको उसकी जो काश्त है वो खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने उसको जो बनाया। और हजरत मौलाना रूम साहब तो ये भी फरमाते हैं इसके बारे में, बांसुरी के बारे में, वो कहते हैं कि जब ये बांसुरी बजती है तो रोती है, कुरलाती है और कहती है कि मुझे उधर छोड़ के आओ जहां से मैं कटी हूं।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: जुदाई, हिजर। तो वो कटना जो है उसका, जहां से वो कटी होती है, और वो कहती है, रोती है जब बजती है, तो वो कहती है कि मुझे उधर छोड़ के आओ जहां से मैं कटी हूं। इसी तरह बांसुरी में, जो सब कॉन्टिनेंट में, ज्यादातर तो इंडिया में सबसे पहले, क्योंकि बांसुरी को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में बांसुरी नहीं थी, जब पाकिस्तान बना ना तो पाकिस्तान में बांसुरी नवाज कोई था ही नहीं। तो मेरे अबू ने पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान में आए तो सबसे पहले मेरे अबू दुनियाए मौसीकी के सबसे बड़े उस्ताद, उस्ताद गुलाम हैदर खान, जिन्होंने लता जी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने मैडम नूर जहां को इंट्रोड्यूस करवाया, ये मैं बातें वो बता रहा हूं आपको जो कोई शायद आप कभी सुनी
1: मैंने
2: ना
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी हाँ जी।
2: जो है ना ये ऑन एयर बातें हो चुकी हैं पहले भी, और ये लोगों को पता भी है जो बहुत मौसीकी से रिलेटेड हैं, उनको पता भी है। और गुलाम हैदर खान साहब वो थे जिन्होंने ये दो लोगों को, लेजेंड लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया उस दौर में। तो मेरे अब्बा जी उनके साथ बहुत लगाव रखते थे, उस्ताद समझते थे उनको, उस्तादों की तरह उनको मिलते थे। फिर उन्होंने मेरे अबू बेसिकली क्लैनेट बजाते थे, दिल्ली रेडियो में जॉब करते थे बकायदा एज ए क्लैनेट प्लेयर। जब पार्टीशन हुई तो फिर वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आए और आकर देखा कि इधर तो बांसुरी नवाज है ही कोई नहीं, और ادھر تو بہت بڑی ضرورت ہے. اور یہاں تک سنا ہے کہ فلم انڈسٹری میں بانسی نواز کی اتنی زیادہ اشد ضرورت تھی کہ لوگ جو ہوتے تھے نا, یہ جو گائیں بکریاں وغیرہ جو کرتے تھے, جن کو چراتے تھے, ان کو لے آتے تھے کہ یار تو تھوڑا بہت بجا رہا ہے نا, یہ تو یہ ریکارڈنگ کروا دے تھوڑی سی, اس طرح کی تھوڑی سی آواز ہی چاہیے بس, اس طرح کی کچھ کر دے. تو کیونکہ ابا نے استاد پنا لال گھوش صاحب کو سنا ہوا تھا دلی ریڈیو میں. پنا لال گھوش وہ تھے کہ ہی واز فرسٹ فلوٹ پلیئر ان سب کانٹیننٹ. تو وہ سمجھ لیں کہ آپ انڈیا اور پاکستان اور بلکہ پورے انڈس کی جتنی بھی جو ہے نا, اس کے سب سے بڑے فلوٹ پلیئر تھے استاد پنا لال گھوش, جنہوں نے اپنی فنگرز کو کٹوایا تھا, یعنی بیس فلوٹ بجانے کے لیے, بڑا بگ فلوٹ بجانے کے لیے انہوں نے اپنی فنگرز کو اس طرح بیچ میں سے کٹ لگوا کے نا آپریشن کروایا, پھر اس کو کھلا کیا اپنی فنگرز کو. انفارچونیٹلی ان کی فنگر ذرا چھوٹی تھی, تو انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ کیا, وہ فلوٹ کے لیے انہوں نے اپنا آپریشن کروا لیا, یعنی کہ اتنے بڑے وہ لیجنڈ تھے. تو ابا کے وہ اسپرچل ٹیچر تھے, میرے ابو ان کو اسپرچل ٹیچر مانتے تھے, لیکن ان سے ملاقات بھی میرے ابا کی ہوئی کافی, مطلب کیونکہ جاب کرتے تھے ایک ہی جگہ پہ, آل انڈیا ریڈیو پہ وہ کام کرتے تھے. تو آل انڈیا ریڈیو پہ جب وہ کام کرتے تھے تو ان کو دیکھا کرتے تھے, کیونکہ وہ تو فلوٹ نہیں بجاتے تھے, وہ تو کلیرنیٹ بجاتے تھے. تو پنا لال گھوش صاحب فلوٹ پہ پلیئر کی ایز اے فلوٹ پلیئر آیا کرتے تھے ادھر, تو ان کو دیکھا کرتے تھے. خیر وہ پوزیشن جو تھی نا بانسی کی, میرے ابا نے ان کو پک کیا ہوا تھا, فالو کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ جتنے بھی ونڈ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں نا یہ ذرا ایکول ہوتے ہیں, ونڈ انسٹرومنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ذرا ایکول ہوتے ہیں. خیر جی پاکستان میں آئے, آ کے انہوں نے اس خواجہ خورشید انور صاحب سے ملے. خواجہ خورشید انور صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ کلائنٹ کو ذرا سائڈ پہ کریں اور فلوٹ بجائیں. انہوں نے کہا جی انفارچونیٹلی میرے پاس بانس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی میں منگوا دیتا ہوں. خواجہ صاحب نے پھر اپنے ایک شاگرد کو بولا کہ پائلٹ شاگرد تھا ان کا, بنگلہ دیش جب بھی جاؤ نا تو قادری صاحب کے لیے نا آپ نے بانس لے کے آنے. تو وہ بانس لے کے آئے, وہ اتنے سارے لے آئے کہ وہ کوئی 200-300 بانس جو ہے وہ ان کو مل گئے. پھر میرے ابا نے کوئی کافی ساری بنائی, خود میک کی, تو ان میں سے کوئی خراب بھی نکلی, کچھ اچھی بھی بن گئی. تو پھر ابا نے ٹرائی کیا, پھر وہ ایسا ٹرائی کیا کہ وہ فلم انڈسٹری کی جان بن گئے. پھر اتنا گانا بجایا کہ ہزاروں کی تعداد میں گانا میرے ابا نے پھر فلم انڈسٹری میں بجا دیا.
1: ویری انٹرسٹنگ.
2: تو یہ ہم اس طرح ہمیں یہ فلوٹ ملی
1: وراثت میں
2: ملی. باقی ہسٹری بھی میں نے آپ کو بتا دی.
1: ویری انٹرسٹنگ سر. یہاں پہ ہم ایک اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اسی موضوع پہ فردر ہم ڈسکشن کریں گے. سو کیپ لسننگ ٹو FM 92.6 UCP کی دنیا. دس از سر کہانی.

0: and I would ask him to play something and bless our ears with this beautiful instrument.
1: जी जी इंशाल्लाह. बात है कि जो हमारा फ्लूट है ये हमारा एक हेरिटेज फ्लूट भी है, जबकि इसके साथ हमारी जो सकाफत जुड़ी हुई है, जिस तरह के हजरत वारिस शाह ने जिस तरह बांसी को प्रोमिनेंट किया है, सूफिया कराम ने बहुत बांसी को प्रोमिनेंट किया है, जिस तरह के मैंने मौलाना रूम के बारे में आपको बताया, तो अब हमारे जो सूफिया कराम थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बांसी को जो है ना वो दिल से प्यार किया. जिस तरह के आप बहुत मशहूर नावल हीर रांझा जो है उसमें जो बांसी का ज़िक्र है वो इतना सारा है कि वो करेक्टर बांसी के बगैर तो वो सजता ही नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी हीर सुनाऊँ कि एक रांझा जो है, एक जो आशिक है, जो एक जिसको कुछ दिल पे लगी हुई चीज़ है, वो किस तरह अपनी चीज़ अपने बांसी के थ्रू अपना दिल की जो भड़ास है वो निकाल रहा है और अपनी किस तरह मोहब्बत कर रहा है अपने सास से भी और इस तरह. तो मैं आपको ये सुनाऊंगा हीर, जो कि हमारी पंजाब की बहुत ज़्यादा कल्चरल एक आइटम है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ.

0: हर दुनिया की हर जो है ना चीज बच सकती है अगर कोई बजाने वाला हो तो, ये सीन है।
1: सर इसी खूबसूरत नोट पे हम आज के एपिसोड को एक कंक्लूजन पे लेके आते हैं।
0: जी जी जी, व्हाई नॉट।
1: फॉर आवर ऑडियंस, फॉर माय वेरी ब्यूटीफुल लिसनर्स, आज हमने फ्लूट को एक ऐसे अंदाज में देखा जिसमें हमें पता लगता है कि फ्लूट सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि इट्स मोर ऑफ अ फीलिंग, इट्स मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। जैसे सर ने हमें हीर और रांझा के बीच में एक कॉन्वर्सेशन दिखाई, उसी तरह फ्लूट इटसेल्फ इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द प्लेयर एंड द लिसनर्स। ऑन दैट वेरी ब्यूटिफुल नोट, दिस इज FM 92.6 UCP की दुनिया। यू वर लिसनिंग टू प्रोग्राम सुर कहानी, where you can listen to new musicians, new aspects of music on every Thursday 4 PM. This is your host
0: Horror Films. And I would like main end pe aakhir pe apne Pakistan ko ek gana tribute karunga.
1: Ji ji. So this is your host Horror Films signing off, and now we're ending on a beautiful note with Sir Akmal Qadri.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सिवी की दुनिया।
1: इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल का नाम तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आप बयक वक्त एक अजीम शायर, फलसफी और सियासतदान थे। बरे सगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों के इज्तमाई शऊर की बेदारी और तरबियत, मुसलमानों की तहजीबी और फिक्री तामीर नो के सिलसिले में उनकी खिदमात हमारी मिल्ली तारीख का रोशन बाब है। अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को बाजार चोड़ी गिरा, मोहल्ला कश्मीरियां, जिला सियालकोट में पैदा हुए। आपके अबाओ अजदाद सप्रू गोट के कश्मीरी पंडित थे जो गालिबन 17वीं ईस्वी के आखिर में हल्का बागोश इस्लाम हुए और तकरीबन 100 साल बाद अलामा मोहम्मद इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक कश्मीर से हिजरत करके जिला सियालकोट में क़याम पज़ीर हुए।

यूरोप पहुंचकर इन्होंने बिल्कुल एक नई दुनिया देखी। यूरोप का इल्मी अंदाज फिक्र, तर्ज हयात और सनतें जिनकी बदौलत इंसान की खिदमत का काम लिया जाता था बहुत पसंद आई, लेकिन दूसरी तरफ इनकी खराबियां देखकर बड़ी बेजारी पैदा हुई। 1905 में यूरोप से वापस आए तो इस्लाम, इस्लामी अकायद और इस्लामी इत्तेहाद के पुरजोश मुबल्लिग बन चुके थे।

1908 में वतन वापसी से चंद माह कबल मुस्लिम लीग की लंदन शाख की मजलिसे आमा के रुकन बने। 1926 में अलामा इकबाल 4 साल के लिए लाहौर की मुस्लिम नशिस्त से पंजाब की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। रुकन होने की हैसियत से इन्होंने कई मुफीद कवानीन मंजूर करवाने में अहम किरदार अदा किया। 1927 में मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हिंदुस्तान के सियासी तस्फिया और दस्तूरी मसाइल पर गौर करने के लिए 1930 से 1932 तक लंदन में होने वाली 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। 1930 में आपने मंटो पार्क में 2 कौमी नजरिया पेश किया जिसको अक्सरियत ने कबूल किया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: अरफा करीम फैसलाबाद के नजदीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 में पैदा हूं। आपके वालिद अमजद करीम रंधावा एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अरफा करीम सिर्फ 3 साल की उम्र में स्कूल जाने लगी। 9 वर्ष की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तहलका मचा दिया।
1: दही परवरिश तो माँ ज्यादा बता सकती है क्योंकि राज तो माँ से होता है।
2: अरफा जब हमारे घर में आई तो हम लोग बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने एक रहमत हमारे घर भेज दी है। और जैसे कि माओ के करीब होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और जो उसकी इब्तदाई परवरिश या उनको बहुत करीब से देखने का मौका सबसे पहले माँ को मिलता है। वो बहुत छोटी सी थी जब से मुझे फील हो गया था कि उसके रिस्पॉन्स बड़े तेज़ हैं, हर काम उसने आम बच्चे की नस्बत जल्दी करना शुरू किया, मसलन बोलना, बैठना, चलना, ये सब कुछ उसने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा जल्दी किया। और उसकी आँखें, आप अगर उसके बचपन की तस्वीरें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी आँखें भी बोलती थी। और उस वक्त जब उसको बोलना भी नहीं आता था, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको जवाब दे देती थी कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसको जब स्कूल में दाखिल करवाया बहुत छोटी एज में, दरमियान में उसकी दादी के साथ उसको अल्लाह ने जन्नत नसीब करे कुछ टाइम मिला, जो 2-2.5 साल की एज थी अरफा की जब उसकी दादी अम्मा फौत हो गई थी, उन्होंने बहुत सारा उसको कलमे, दुआए कनूत और आयतुल कुर्सी इस किस्म की चीज़ें सिखाई। अरफा 1.25 साल की थी जब नात भी पढ़ती थी, कौमी नगमा भी गाती थी। ये मेरे पास उसकी आवाज़ें अभी तक रिकॉर्ड हैं। हर चीज़ में वो नात हो, वो किरत हो, वो मौसीकी हो, वो डिबेटिंग हो, कंपेयरिंग हो, कोई दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं थी स्कूल में रहते हुए जिसमें वो नमाया नहीं थी या जिसमें वो पीछे हट गई हो। हर चीज़ में भरपूर माशाल्लाह उसने हमेशा हिस्सा लिया।
0: अरफा ने दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एहसास हासिल किया। इससे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, जिससे दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। अरफा करीम की तरह और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमें सिर्फ इनको तराशने की जरूरत है। जैसे कहते हैं, मोती तो बहुत होते हैं लेकिन सच्चा मोती हमेशा समुन्द्र की गहराई में मिलता है, और जब हम इसकी गहराई तक पहुंचे तब वो मोती आसमान तक जा पहुंचता है। दूसरी तरफ अरफा करीम ने ये पैगाम दिया कि तालीम में आगे बढ़कर दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाया जा सकता है। अरफा करीम ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर जहन से झिझक को झटकना होगा। अगर आप झिझकते रहेंगे तो फिर हर काम में झिझकेंगे, और अगर आप पुर एतमाद होंगे तो फिर हर काम बाएतमाद होगा। लिहाजा झिझक को कभी अपने जहन पर काबिज ना होने दें। खुदादाद साहितों की मालिक, दुनिया की पहली कम उम्र तरीन आईटी एक्सपर्ट और तमगा हुसन कारकर्दगी की हामिल अरफा करीम रंधावा एक शायरा भी थी। उनकी उस वक्त की 19 अंग्रेजी नज़में इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लिया जिसे हासिल करने की जुस्तजू में कई साल लोग तगोदो में लगे रहते हैं। पूरी दुनिया में सिक्का मनवाया और पूरी दुनिया के सामने मुल्क कौम का नाम रोशन किया। अरफा करीम जब बिल गेट्स से मिली तो इनके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान का दूसरा रुख अरफा करीम है। अरफा करीम को पाकिस्तान के दूसरे चेहरे का नाम दिया, एक रोशन चेहरे का नाम।
3: ये वतन

0: अरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सनद दी गई। ये ना सिर्फ अरफा के वालदेन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फखर की बात थी। इसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की जानिब से 2 हफ्तों के लिए इन्हें मदऊ किया गया, जहां इन्हें मुख्तलिफ तोहफाजात और एजाजात दिए गए। अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा करीम को 2005 में इनकी सलाहियतों के एतराफ में सदारती पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया, जिसको हासिल करने के लिए उम्र लग जाती है। दुनिया में से 1000 से ज्यादा मंदूबीन में से पाकिस्तान का मस्बत पहलू उजागर करने वाली सिर्फ अरफा करीम थी। अरफा करीम अपनी बीमारी से पहले नासा के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा। इनको फौरी तौर पर CMH अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इनको दिल की तकलीफ भी शुरू हो गई, जिसकी शिद्दत से कोमे में चली गई। 2 जनवरी को बिल गेट्स ने अरफा के वालदेन से राब्ता किया और इनकी ख्वाहिश का इजहार किया कि अरफा का इलाज अपनी जेर निगरानी अमरीका में करवाना चाहते हैं। बिल गेट्स के ही कहने पर अमरीकी डॉक्टर्स का पैनल बना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरफा करीम के इलाज में मुआवनत करते थे। 2012 में 26 दिन कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी शब 10 बजे तमाम पाकिस्तान के चैनल्स पर इनकी अफसोसनाक खबर नशर हुई। पूरा पाकिस्तान सदमे से निढाल हो गया। कुछ लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं, अरफा उनमें से एक थी। इनको खराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत ने बाद इस मर्ग लाहौर के एक पार्क और कराची का IT सेंटर अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया। इसके अलावा इनके गांव को भी अरफा करीम का नाम दे दिया गया। कर्नल अब्दुल करीम, अरफा करीम के वालिद, जिनका काम मुल्क का दफा करना है, जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एक रास्ता दिखाया कि पाकिस्तान का नजरियाती सरहदों पर दफा अरफा करीम जैसी बेटियां हैं, जिनसे दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है।
1: और उसके किस्मत में अल्लाह ताला ने हमेशा ही कामयाबियां डाली। वो अपनी किस्मत साथ लेके आई थी, चमकता सितारा थी अपने नाम की तरह। अरफा का मतलब ही होता है कि बुलंद तरीन, सबसे आला, सबसे अरफा। वही मकाम उसको दुनिया में मिला है और दुआ कि वही मकाम उसको अल्लाह ताला के हाथ नसीब हो।
0: पाकिस्तान की बेटी पूरी सरारियत के पर्दों में छुपी हुई परी की तरह इस दुनिया से कूच कर गई।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कमाल, और आज हमारे साथ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से मौजूद हैं सर मेहरान। सर कैसे हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अहमद आप कैसे हो?
3: अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
4: प्लेजर इज़ माइन।
3: सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको 3 साल हो गए हैं UCP में, और आप अब मौजूदा IR के कोऑर्डिनेटर सर्व कर रहे हैं।
4: जी, सम 3 years एंड फ्यू मंथ्स। और हाँ, मैं पिछले 1.5 साल से BSIR की कोऑर्डिनेशन को मैनेज कर रहा हूँ।
3: तो सर पिछले 3 साल से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और एज अ कोऑर्डिनेटर कैसा एक्सपीरियंस?
4: UCP हैव गिवन मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को जब मैंने ज्वाइन किया था, आई केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, वहाँ पे मैं लेक्चरशिप से कर रहा था। और UCP में इट वॉज़ फन, इट ऑलवेज बीन, काफ़ी अच्छे कोलीग्स मेंटोर्स मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग वॉज ऑल्सो कि मैं एक थोड़े कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में आना चाह रहा था जहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हो। तो पिछले 3 साल से कॉन्टीन्यूसली इस ग्रोइंग सफ़र पर हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
3: सर फैकल्टी आर के हर प्रोग्राम में ना हमारा एक टॉपिक होता है, तो आज का भी हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है। तो सर इसका एक आम बंदे के जानने के लिए, जो कि स्टूडियो से बाहर बैठा, सर रोड पे जा रहा है, गाड़ी में बैठा है, उसके जानने के लिए आप क्या बताएंगे कि फॉरेन पॉलिसी है क्या?
4: सो बेसिकली अहमद, हम फॉरेन पॉलिसी को अक्सर सुनते पढ़ते हैं अखबारों में और अपनी डेली लाइफ रूटीन में। फॉरेन पॉलिसी से जो एक मतलब लिया जाता है, विच इज़ दैट के फॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक स्टेट की पॉलिसी है। जैसे हमारे पास हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं, वैसे ही हमारे पास फॉरेन पॉलिसी एक रियासत की पॉलिसी है। और इसमें स्टेट फॉर्मुलेट करने की कोशिश करती है अपने फॉरेन रिलेशंस को, अपने बैरुल अक्वामी तालुकात को। सो जब एक रियासत के कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो कि उसकी अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं होते, जैसे हमारे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे होते हैं कि जो एक स्टेट की बाउंड्री तक कन्फाइन नहीं रहते, तो उस पैराडाइम को मैनेज करने के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हम अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं कि अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके हम अपने रिलेशंस को किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी हमें उस मकसद के लिए काम आती है कि एक स्टेट की पॉलिसी जो कि उसके ब्रॉडर रिलेशंस को हासिल करने के लिए काम आती है।
3: सर इसके भी 2 पहलू आ जाते हैं ना, कि इसकी तश्कील क्या है और तकमील क्या है।
4: अहमद, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि इस फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए उसकी तश्कील और उसकी तकमील, उसकी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन, हमें दोनों को समझना पड़ता है। और उसकी तश्कील हम करते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है ऑन द बेस ऑफ कौमी मफादात और कौमी मकासद के, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। कौमी मफादात या कौमी जो मकासद जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं उनके जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सेम होंगे, इंक्लूडिंग स्टेट सोवरेनिटी, इकोनॉमिक इंटेग्रिटी, देन आइडेंटिटी ऑफ ए स्टेट। तो ये 3 बेसिक पैराडाइम्स के अंदर हम एक स्टेट के जो मकासद हैं उनको बयान कर सकते हैं। ऑल अराउंड द ग्लोब हर किसी को अपनी सोवरेनिटी को इंश्योर करना होता है, हर किसी को अपनी इकोनॉमिक इंटेग्रिटी को एक्सपैंड करना होता है, और हर किसी को अपनी आइडेंटिटी को थ्रू आउट द ग्लोब जो है वो मनवाना होता है। तो इन्हीं 3 इंटरेस्ट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक हर स्टेट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने इन इंटरेस्ट को अचीव कर सके। उन ऑब्जेक्टिव्स क्यों माइंड में रखें हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन करते हैं।
3: जी सर बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है, और इन दोनों फैक्टर में से पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है?
4: सो अनदर गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं आपके पिछले क्वेश्चन का जवाब दूँ। आपने तकमील की भी बात की, मैंने आपको सिर्फ तश्कील का भी बोला था। या तो अबाउट द तकमील फॉरेन पॉलिसी की, उसके लिए हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक डिप्लोमेसी और किसी एक ज़माने में वॉर भी एक इम्पॉर्टेंट टूल था फॉरेन पॉलिसी का। अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएं, जब हमारे पास सिविलाइज स्टेट्स नहीं थे, बादशाहत का ज़माना था, तो किसी बादशाह को किसी नेबरिंग रियासत स्टेट किसी नेबरिंग रियासत से कुछ चाहिए होता था, तो वो उस पर इन्वेड करता था। कोहेरेंस वॉर इज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके इंटरेस्ट जो आपकी टेरिटरी के बाहर उसको हासिल करने के लिए। हमारे पास मुगल एम्पायर की और हमारे पास बाकी सारी बहुत सारी रोमन एम्पायर्स की, बहुत सारी एम्पायर्स की एग्जांपल्स हैं कि जब भी किसी को कोई इंटरेस्ट जो कि उनकी टेरिटरी से बाहर होते थे तो वो उसके लिए उसको इन्वेड करते थे, उस पर अटैक करते थे, तो वॉर। लेकिन सिंस वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, इंटरनेशनल लॉज की कोडिफिकेशन के बाद हम वॉर को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर मानते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट भी अगर वो तब हो जब वो जस्ट वॉर हो। सो नाउ डिप्लोमेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरन पॉलिसी। फॉरन पॉलिसी की तकमील के लिए हमारे पास डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में आगे वी हैव अ फर्दर कैटेगरीज, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड द स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। नाउ मूविंग टू योर करंट क्वेश्चन विच वॉज के हारजा पॉलिसी का आज़ाद होना, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। गुड क्वेश्चन अहमद। अखबार में आपने भी अक्सर पढ़ा होगा मुल्कों की आज़ाद खारजा पॉलिसी, किस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, किसकी नहीं है, कभी इन इस तरह के अल्फाज से फैमिलियरिटी हुई होगी, राइट? तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से मुराद बेसिकली आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होती है, डिपेंड करता है आपकी पावर पे। द मोर पावरफुल यू आर द मोर इंडिपेंडेंट योर फॉरेन पॉलिसी इज। तो क्या पावर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव है, अहमद आपके ख्याल से क्या है? ऑल द इंटरव्यू मेरा है लेकिन मैं आपको भी साथ एंगेज करूंगा।
3: सर मेरे ख्याल में पावर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है,
4: रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एक्चुअली एब्सोल्यूट आपकी बात ठीक है, हम उसको क्योंकि सोशल साइंसेज में कुछ भी पूरी तरह से डिनाई नहीं करते, लेकिन पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर आप ताकतवर हो तो आप किससे ताकतवर हो, आप किसी से ताकतवर हो या किसी से कमज़ोर हो, तो वो रिलेटिव में चली गई। जब आप किसी से ताकतवर हो या किसी से कमज़ोर हो तो वो एब्सोल्यूट ना रही, वो रिलेटिव में गई। तो सिंस पावर रिलेटिव है तो फॉरेन पॉलिसी का इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होना भी रिलेटिव है। वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान पावरफुल है वहाँ पर उसकी फॉरन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और प्रोएक्टिव होगी, वो डिसीजन लेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं जो जिनसे हम पावरफुल हैं, वहाँ पे नॉर्मली हमारी फॉरन पॉलिसी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन सिमिलरली जहाँ पे बिगर स्टेट्स आ जाती हैं तो वहाँ पे आपकी फॉरन पॉलिसी डिपेंडेंट और रिएक्शनरी बेसिस पे चली जाती है, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो एक ग्लोबल ऑर्डर को मैनेज कर रही होती हैं, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जब अपनी फॉरन पॉलिसी बनाते हो तो आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इट्स अ मिक्स फिनोमेना, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट भी होती है एट अ सेम टाइम और डिपेंडेंट भी होती है।
3: सर पावर की भी आपने बात की, तो अगर हम कुछ डिकेड्स पीछे जाएं तो कुछ स्टेट्स का ये मानना होता था कि एक स्टेट का सर्वाइवल दूसरी स्टेट्स के हाथ में पे जुड़ा हुआ है, कुछ का अभी भी मानना है ये, तो क्या आपके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ठीक था कि नहीं?
4: सो यू आर टॉकिंग अबाउट द रियलिज्म, और अगर अभी ये नहीं मानना तो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। रियलिज्म जो कि ये मानता है कि आपका बका जो है वो, आपका सर्वाइवल जो है वो आपकी पावर मैक्सिमाइजेशन पे है। जितनी आप पावर गेन करेंगे उतने आप पावरफुल होंगे और उतने चांसेस आपके सर्वाइवल के ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके जवाब में कॉन्ट्राडिक्ट्री जो है वो हमारे पास लिबरलिज्म है। अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो उसमें हमारे पास, हम बिलीव करते हैं कि कोऑपरेशन और आपस में को इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस से हम जो है इस चीज़ को अपने अपने स्टेट के रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं।
3: जी तो सामिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे और सर से मजीद सवाल पूछेंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामिन, हम वापस आ चुके हैं और सर से हम बात कर रहे थे रियलिज्म लिबरलिज्म के बारे में और पावर के बारे में। सर, हम यही बात कर रहे थे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म का पावर के साथ क्या रिलेट।
2: हाँ, तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था जिसके एड्रेस में हम रियलिज्म और लिबरलिज्म की तरफ बढ़े थे, वो सवाल आपका कुछ इस तरह से था कि पहले रियासतें ये मानती थीं कि उनका सर्वाइवल, उनका बका उस पर डिपेंड करता है कि जब उनके नेबरिंग में कोई बिगर पावर ना हो, राइट। तो रियलिज्म और लिबरलिज्म को इस पैराडाइम में हमने डिस्कस किया था एंड यू वर राइट अबाउट इट, लेकिन आज के टाइम पे भी हमारे पास ये दोनों थ्योरीज, ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी किसी पिछले ज़माने में थी। लेकिन सिंस इन दोनों अप्रोचेस ने एक अल्टरनेटिव सिस्टम दिया कि आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते होंगे कि आपका बका, आपका सर्वाइवल जो है वो इसी पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को खुद एम्पावर करो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, यस, अगर आपके नेबरिंग में अगर बिगर पावर्स हैं तो पाकिस्तान या कोई भी कंट्री उसके साथ को एग्जिस्टेंस में एक अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकती है, जो कि बेसिस है लिबरलिज्म की। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास चाइना है कि सिंस पाकिस्तान और चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी में दे बिन ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड, और अभी जब से वो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं सिंस द सी पैक, तो हम वी कैन सी के दे बिन एस्टेब्लिशिंग अ गुड रिलेशन विद ईच अदर। तो एक बिगर पावर में और एक स्मॉलर पावर में एक लंबे अरसे से एक ज़बरदस्त रिलेशन जो एस्टैब्लिश हैं वो हमारे पास एक आइडियल एग्जांपल है पाकिस्तान और चाइना की। तो इट डजंट ऑलवेज हैज टू बी कि आपकी नेबरिंग में आपसे वीकर स्टेट्स ही हो तो आपका सर्वाइवल इंश्योर हो सकता है।
1: जी सर, सर आपने पिछले सवाल में एक बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी के एक टूल वॉर भी यूज होता था पहले।
2: हाँ जी,
1: है तो भी टूल है ये, लेकिन अब अगर करंट टाइम में हम देखें तो अगर दो स्टेट्स के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो वॉर के अलावा कौन सा टूल यूज कर सकती हैं?
2: इसके लिए हमारे पास पूरा एक कॉन्सेप्ट थ्योरी है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, ADR के नाम से जानते हैं, नेगोशिएशन, मीडिएशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन की पैराडाइम में ये चीज़ आती है। हमारे पास बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने गुड ऑफिसर्स प्रोवाइड करते हैं उन स्टेट्स को जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसको रिजॉल्व करना, और इवन अगर किसी के बीच में जंग है भी तो उसका इख्तिताम जो है वो सीज फायर की शक्ल में होता है। तो एवरी वॉर एंड्स इन अ केस ऑफ द सीज फायर एंड देन सीज फायर लीड्स टूवर्ड्स द नेगोशिएशन एंड इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट। हम देखते हैं कि वॉर ऑन टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो कि तकरीबन 21 साल चली लेकिन ख़त्म हुई एक सीज फायर के साथ और एक दोहा एग्रीमेंट के साथ। ग्लोबल जितनी भी वॉर्स हैं उसके बाद हमें अब नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। तो यही हमारे पास अल्टरनेटिव टूल है कि इफ़ वी डोंट वांट टू गो फॉर अ वॉर तो विल गो फॉर द नेगोशिएशन, ताकि हम मिल बैठ के हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें। और अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑफिसर्स मिल जाते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं जो अपने ऑफिसर्स प्रोवाइड करती हैं रियासतों को ये काम करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक एग्जांपल।
1: सर, एज अ पाकिस्तानी कराची से लेके हैबर तक हर एक इंसान के एक लफ्ज़ तो आदमी सुना होगा सी पैक का। तो सर, एक आम बंदे के जानने के लिए सी पैक है क्या?
2: अनदर

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP Ki Duniya. Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।
1: Admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucb.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मट्टी का है बाबा तू, तेरी किस्मत एक सफर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

इस सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.